0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: गर्मी के मौसम में सरुआ रोग से बचा जाए। गर्मी के मौसम में मलेरिया, चिकनगुनिया, कालरा, डेंगू, हैजा जैसन विभिन्न सरुआ रोग फैल सकत है। सरुआ रोग फैलाए वाला माछी, मच्छर ई सब से बचा जाए। सरुआ रोग से बचे के लिए शुद्ध और उबालल पानी पिया जाए। बासी और सड़ा गला खाना न खावा जाए। घर के भीतर और आसपास सर सफाई रखा जाए। अनुरोध है लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
2: शांति को आवाज रेडियो।